इंसानों और जानवरों और चारपायों के भी कई तरह के रंग हैं। खुदा से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। बेशक खुदा गालिब और बख्शने वाला है।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Higher Mini LED TV ke saath 3 mahine ki TapMag subscription bhi with free installation. 144Hz picture quality. Jandar. Banaye har match ko shandar. Powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound. Kare aapko excitement se surround. 3-year warranty aur 6-month free replacement ke saath. Aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye. Higher, more creation, more possibilities.
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
5: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार.
7: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
8: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
9: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
10: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
4: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
0: And
8: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
6: And अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
11: MCB बैंक फॉर लाइफ.
0: And

0: अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा अपने दिन का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से, और कुरान शरीफ पढ़ें. और जब भी कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें. हम पढ़ रहे हैं आज सूरह नास का तर्जुमा. आई एम श्योर कि सबको सूरह नास का तर्जुमा आता होगा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तुम कहो मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूं, तमाम लोगों का बादशाह, तमाम लोगों का माबूद, बार बार वसवसे डालने वाले, छुप जाने वाले के शर से पनाह लेता हूं, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है जिनों और इंसानों में से. सूरह नास का तर्जुमा आपने सुना तो आपकी हमेशा कहते हैं कि सूरह नास, सूरह फलक, ये कुल तीन कुल चार कुल ये पढ़ते रहने चाहिए अपनी हिफाजत के लिए. और जो भी मुझे लगता है कि हमारे दिल में जो नेगेटिविटी पैदा होती है उसका ये भी है कि उससे हमें पनाह मांगनी चाहिए हमेशा अल्लाह ताला से. तो जब भी घर से निकले सूरह फलक, सूरह नास और कुल वलाओ अहद जरूर पढ़े और फूके अपने आप पे और कराची पे पूरे, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि कराची पे हम दुआई कर लें. एनीवेज वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और आपको आज के टॉपिक भी बताते हैं. सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
1: It's 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: एक normal AC इस extreme 53 degree heat का मुकाबला नहीं कर सकता. Higher का नया Real T3 inverter AC, ultra big outdoor के साथ. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
1: and
3: Higher Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving. No Frost, No Worries,
1: and
2: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. हायर.
1: एंड
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: एंड
7: MCB बैंक फॉर लाइफ.
1: एंड

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने 4 BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
4: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैस कैश है ना।
10: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
10: and
7: Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
10: and
3: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
10: And
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: And
11: MCB बैंक फॉर लाइफ।
10: And

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
3: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: MCB बैंक फॉर लाइफ
0: एंड

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप लाख को से तीन बार मौत देखा।
5: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
8: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
8: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: जी आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजिज मियां। आज हम बात करें कि पिछला जमाना अच्छा था कि आज का जमाना अच्छा है वगैरह वगैरह और आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप लोग मुझे बता रहे हैं कि क्या बात है और कैसे जो है आप लोग जो है वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हाँ जी, यही उम्मीद कह रहे हैं कि हमें कॉल्स लेनी चाहिए तो हम कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और एक बार हुसैन साहब का मैसेज आ गया है और वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समीर जी, आज की टेक्नोलॉजी के दौर में हम हकीकी खुशी से महरूम हो गए हैं। जब ईद पर ईद कार्ड मिला करते थे, साथ मिल बैठने का मौका मिलता था, आपस में बातें होती थी, आज मिलते तो मैं मोबाइल की दुनिया में मस्त हो जाते हैं। पर्सनली मुझे गुजरा जमाना पसंद है जब रिश्ते खालिस होते थे। बिल्कुल सही बात है, आजकल हम इंसानों से ज्यादा मशीनों के साथ वक्त गुजार रहे हैं और आपको पता है कि इंसान या कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के साथ ज्यादा वक्त गुजारती है उस पर उसका असर आना शुरू हो जाता है। हम भी अजीब से मशीनी हो गए हमारे। अब मैं सोच रही थी उस दिन अपना फोन, मैं फोन स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो मेरे पास तकरीबन लाइक 4000 कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक 4000 लोगों के नंबर्स मेरे फोन में सेव्ड हैं वो शुरू से पता नहीं कब थे। और अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मेरे ख्याल से 4 लोग भी नहीं है मेरी जिंदगी मुझे, तुम बोलूंगे यार जरा 10000 ही भिजवा दो। तो ये दौर आ गया, हमारे पास 4 पक्के दोस्त नहीं है और हम अपनी गलतियां, हम अपनी चीजें छुपाते हैं लोगों से, तो ये शेयर नहीं करते, अपनी तकलीफें छुपाते हैं। तो ये क्या जमाना है। और पहले जमाने में इतने बच्चे होते थे और सब पल जाया करते थे, कोई कंप्लेन नहीं करता था कि जी इतने बच्चे हो गए कोई हमदर्दी भी नहीं करता था कि कोई मतलब इतने बच्चे हो गए भाई पालोगे कैसे, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कह कह के। और फिर वो मामू जो है वो भी इतने सारे होते थे, मामू हैं खालाएं, तो वो भी पल जाते थे सारे बच्चे, मामू खालाएं बड़े होके मामू में और क्या कहते हैं भांजों में, खालाओं में और भांजियों में कोई खास एज डिफरेंस भी नहीं होता था, सब बच्चे आराम से मोहब्बतों में पल जाते थे। अब ये है कि 2 बच्चे पालना भी मुश्किल है, स्कूल की फीसें देना मुश्किल है लोगों के लिए, हर चीज महंगाई होती जा रही है, हर चीज मशीनी होती जा रही है। और फिर भी द सैड थिंग इज कि वक्त के साथ साथ कामयाबी का मायार सिर्फ और सिर्फ पैसा है। कामयाबी का मायार ये नहीं है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं या आप कितना लोगों से प्यार करते हैं, आपके कितने दोस्त हैं। कामयाबी का मायार यही है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप किस गाड़ी में शो मारते हुए इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं, कितना पैसा है, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल कितना महंगा है, खवातीन के लिए कौन सा बैग वो इस्तेमाल करिए, आपके बच्चे काबिल हैं, आपके बच्चे ओबीडियंट हैं या खुश इखलाक हैं, ये मायार नहीं है। और ये हमारी, मैं अपनी फैमिली का भी बता रही हूँ कि जी पहले होता था कि आई डोंट नो कौन सा, हमारे सब फैमिली में तो ये था जिसके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं वो बच्चा हालांकि कितना एरोगेंट हो, कितना बकवास हो असली लाइफ के अंदर, लेकिन नहीं उसके ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो बच्चा अच्छा है, तुम उस बच्चे की तरह बनो। अच्छा फिर वो बच्चा पढ़ लेके अमरीका चला गया तो नहीं वो बच्चा अच्छा है जो अमरीका में सिर्फ अपने लिए जी रहा है, लेकिन वो बच्चा अच्छा है क्योंकि वो अमरीका में रह रहा है। तो आज भी यही मैं आ रहा है कि जी अमरीका में जो लोग रह रहे हैं और भले पर्सनली लाइफ में कैसे भी हो वो बेटर है, और जो बेचारा बेटा यहां पे काम कर रहा है, मां बाप को अस्पताल लेके जा रहा है, वो बेचारा मां बाप की डांटे भी सुन रहा है वो, लेकिन अच्छा भी वही बच्चा है जो थोड़े बहुत पैसे भेज देता है वहां से, ठीक है उसकी को अहमियत है। बेटा तुम कब आ रहे हो, अच्छा गलती से बेचारा 5 साल बाद आ भी जाए, चक्कर भी लगा ले तो उसको VIP ट्रीटमेंट मिलती है, और वो 10 दिनों के लिए आता है, ऐसे शो मार रहा होता है, मुझे छुट्टी नहीं मिली, और वे ऐसी जगह काम करने की जरूरत क्या थी जहां उनके हिसाब से छुट्टी मिले तुम्हें। तो खैर ये बातें हमारी, और आप बताएं कि आपकी क्या बातें, आपकी इस बारे में क्या राय है कि पहला जमाना अच्छा था या आज का जमाना अच्छा है, जो भी जमाना आपको अच्छे लगे वो हमें बता दें, क्योंकि हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे ऐसी बातें मेरे अलावा कौन पूछता है आपसे। तो खैर मुझे मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या आजय समिया इंस्टाग्राम पे। और एक और तरीका है, थर्ड तरीका, कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसको भेज देंगे 3636 पर। और नसीम पटेल जी आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, आपके मैसेज का भी मुझे इंतजार है। और आप मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram।
3: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
7: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
8: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर अभी जैज कैश डाउनलोड करो पाओ इंस्टेंट लोड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस वो भी बिना किसी रिटेलर के आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना
9: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैज कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना
9: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: AGS ट्यूबलर दिखाए काम AGS ट्यूबलर बैटरी दिल को है आराम
1: एंड
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: एंड
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
6: And अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
3: And MCB Bank for life.
1: And
11: तूफान है हर जीत की पहचान है
1: And
11: फिनिक्स लगा और भूल जा
1: And
3: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
1: FM 24/7/365
12: Let's celebrate
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Hire Kar Naya, No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
3: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: MCB बैंक फॉर लाइफ
0: एंड
6: तूफान है हर जीत की पहचान है
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
8: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
9: Us on facebook.com/fm247365
10: fm247365 100 fm.
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
12: Ye paigham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
13: Good morning, Pakistan, on FM 100.

6365 या मुझे मेरी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज आज इस समय यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जमाना अच्छा है आपको जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, शहर पीपल्स पार्टी चला रही है, या MQM का जमाना अच्छा था, वो जमाना अच्छा था। जो भी आपका फेवरेट जमाना है हमें बता दें, क्योंकि हम ही नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे। और हम आपके लिए प्ले करें बिजनून की आवाज में ये ट्रैक।

0: This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur
1: bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
2: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Agar Jazz Cash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. Jazz Cash hai na.
3: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
3: No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Hire Kar Naya. No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology. Jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
3: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
0: And
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
5: MCB बैंक फॉर लाइफ.
0: And
6: तूफान है हर जीत की पहचान है.
0: And
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
8: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
9: खवातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जब ये जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है. मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है. गर्देश से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है. खुदा रा अपने बच्चों पर नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके. हमारा आज़म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान.
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: Like us on facebook.com/FM247365.

0: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
4: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
8: इट्स 24 आवर्स नॉन स्टॉप वाइब्रेशन connecting you
9: connecting
8: holding you
9: holding
8: with FM 100
10: FM 100 FM 100

0: This program is brought to you by Aji, Higher Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: बैक टू बैक ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक।
5: ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक।
4: दिस इज FM 100।
6: कम ऑन।

0: हायर करना है नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: This program is brought to you by Aji, Hire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
4: FM 247365.
5: Back to back. Only music, no art talk.
6: Only music, no art talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: 100 FM
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: This program is brought to you by आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरती बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: FM 247365. Back to back, back to back. Only music, no RT talk.
5: Only music, no RT talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: with the lunchtime special on the big one, FM 100.
6: Don't miss out.
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
8: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hain aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? Ji haan, aaj hai Monday, yani ki we all are back to the routine. छुट्टी मना ली है, अब सब आ चुके हैं काम पर वापस। तो कैसा लग रहा है काम पर वापस आकर? अभी भी आ रही है नींद या फिर नहीं भाई? कल आप रज रज के सोए हैं, इतना सो लिए हैं कि आज तो नींद ही नहीं आ रही है। और अगर आप रात में देर तक नहीं जागे तो ऑब्वियसली आपके लिए सुबह उठना कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आप पूरी रात जागे हैं जस्ट लाइक मी तो फिर सुबह उठने में आपको दुश्वारी पेश जरूर आई होगी। लेकिन फिर भी ना संडे वाले दिन की एक अच्छी बात यह होती है कि आप उसे एंजॉय तो करते हैं, दिन भी तेज से गुजर जाता है, लेकिन मंडे वाले दिन आप ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि यार ये तो एक नॉर्मल रूटीन है जो हम सबको फॉलो करना है। तो आई थिंक इसमें ज्यादा मुश्किलात वैसे हो ही नहीं चाहिए। तो क्या हुई आपको मुश्किलात, क्या रही सूरत हाल, इस पर भी होगी बात। लो भाई, बहुत सारी बातें मैंने ऑलरेडी कर ली, हद तक के प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज हुआ भी नहीं, क्योंकि जी बाकायदगी से आगाज सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ। तो चलें जी, लेट्स बिगिन।

Yes, everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो जी, तरीकाकार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का बहुत ही है आसान। इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीकाकार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल अहवाल बता सकते हैं, आप सबका दिन कैसा गुजर रहा है और कैसा गुजरा कल का दिन। कल का दिन का हम जिक्र जरूर करते हैं, प्रीवियस डे का, इसीलिए क्योंकि आज मंडे है और संडे छुट्टी का दिन होता है, यानी कि एक्साइटिंग डे होता है, बड़ा मजा आ रहा होता है इस दिन को एंजॉय करने में और दिल बस ये चाह रहा होता है कि ये दिन जो है वो खत्म ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे हफ्ते में सबसे छोटा दिन ना संडे का होता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा वैसे हकीकत कुछ ऐसी नहीं है, 24 घंटे का ये दिन होता है कोई इस दिन में कमी पेशी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल साल का सबसे तवील तरीन दिन और सबसे छोटी रात थी और आज के बाद से जो है वो दिन आहिस्ता आहिस्ता छोटे होने लगेंगे और रातें लंबी होने लगेंगी और ये सिलसिला जो है वो 21 दिसंबर तक चलता रहेगा। हर साल 21 जून को सबसे तवील तरीन दिन और मुख्तसर रात होती है और बिल्कुल ये सिलसिला जो है वो 21 दिसंबर तक जारी रहता है। एंड आई रियली लाइक दीज डेज, ये दिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं तो ऐसा लगता है आपके पास बहुत कुछ करने को है, रोशनी रोशनी रहती है और आप जब देखते हैं अच्छा अभी 6 बजे हैं और अभी रोशनी हो रही है तो लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट जब रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं ना, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन ऐसा है कि जब दिन लंबे रहते हैं ना तो एक रौनक रहती है बाहर और जब रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं, दिन मुख्तसर हो जाते हैं तो बहुत जल्दी ना बड़ा सन्नाटा होने लगता है। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा ऑब्वियसली, अभी तो जून चल रहा है, दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, मिनटों में कम होते होते होते ये सिलसिला जारी रहेगा। तो कल का तवील तरीन दिन को आपने कैसे गुजारा हमें जरूर बताएं। कहीं आकर जाकर पिकनिक मनाकर आराम कर ग्रोसरी कर मजे मजे के खाने पकाकर या बस फिर ऐसे ही। अच्छा भैया, हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं आई एम सबा। ओके जी, सबा जमान हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं कैसी हैं आप, आई एम बिग फैन। ओ थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक हूं मैं और बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमें सुनती रहें और अपनी हाजिरी लगाती रहें। तो सभा का सबसे पहले मैसेज आ चुका है। अब सभा, आप भी अपने दिन के बारे में हमें जरूर बताएं कि आज का दिन कैसा गुजरा, कल का कैसा गुजरा और आज है 22 जून तो आज जिस किसी की भी सालगिरह है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। और मजीद कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी होगी बात। मौसम की क्या है ताज़ तरीन सूरत हाल, कौन सा गाना चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग पर, क्या है सूरत हाल, इसका भी होगा जिक्र। यानी कि ये बात तो तय है कि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी बातें होंगी, तो बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। फिलहाल एक अदर ट्रैक को शामिल करते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
3: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
0: एंड
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: एंड
5: MCB बैंक फॉर लाइफ
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247 365
6: 365. This is the lunchtime special only on FM 100.
7: You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.
8: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
9: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
9: Midday break a blast.
10: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Main aa chuki hu wapas aur aap sab sun rahe hain program Lunchtime Special with me. तो भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें बाकी हैं और ये बातों का सिलसिला जारी रहता है 2 बजे तक, क्योंकि हमारा और आपका साथ होता है 12 से 2 के दरमियान और ये साथ हमारा और आपका कायमो दायम है। यानी कि ये बात होता है कि अभी मजीद बहुत सारी बातें बाकी हैं जो कि हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ये तरीकाकार आपको बता देते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, अपनी हाजिरी कैसे लगा सकते हैं। अगर आप हमारी बातों से रिलेट कर रहे हैं या हमारे किसी सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, तो जी आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल अहवाल बता सकते हैं और हमारा एक पूछे जाने वाला सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। तो वो सवाल क्या है जो हमारे पक्के लिसनर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया है उनके लिए सस्पेंस छोड़ते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो सवाल क्या है। जब तक प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत की जानिब एक अदर ट्रैक आप सभी के नाम आज नाजी हसन की आवाज हम शामिल कर रहे हैं।

ओके जी, सो आज हमने आपको ये ट्रैक डेडिकेट किया है और बातों का सिलसिला जारी है भाई। प्रोग्राम का हिस्सा बनने का तरीका कार भी हम आपको बता चुके हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जी आपने ट्रैक लगाने से पहले एक बात कही थी कि एक सवाल आप पूछेंगी, तो वो क्या है? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो एक्चुअली में सवाल है क्या कि कुछ तो पहले से जानते हैं और कुछ अनजान हैं। तो भाई ये वो सवाल है जो कि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का एक कंपलसरी हिस्सा है। तो भाई ये सवाल ये है कि आपके लंच में क्या है, क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है, गैस आ रही है या नहीं आ रही है। ये एक आजकल ना हम सबके घरों में एक सबसे जो अहम तरीन मसला है ना, वो ये है कि हम कुछ भी पकाने जा रहे होते हैं, हम कुछ भी करने जाने से पहले ना ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं गैस आ रही है या नहीं आ रही है। और लकीली अगर गैस एक दो मिनट भी एक्स्ट्रा आ जाती है ना, तो हमें लगता है कि यार इससे बड़ा इनाम और क्या मिल सकता है हमें। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है कि गैस आजकल हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसके आने पर हम बे इंतहा खुशियां मनाते हैं और अक्सर औकात समझ ही आ रहा होता है कि गैस आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब क्योंकि अब हम लोग इतने जो है वो पंक्चुअल हो चुके हैं टाइम के अकॉर्डिंगली कि जी हाँ, किसी के यहाँ जो है वो सुबह 7 बजे आती है, किसी के यहाँ 6 बजे आती है। अच्छा, ये टाइमिंग भी सबके एरिया वाइज अलग अलग है और दिए गए औकात पर भी गैस नहीं आती। सो दैट इज ऑल्सो वेरी सैड कि जो दोपहर का टाइम है 12 से 3 के दरमियान, किसी के यहाँ 1 बजे आ रही है, किसी के यहाँ 2 बजे आ रही है, किसी के यहाँ 1.5 बजे आ रही है और किसी के इतने लेट आने पर जल्दी भी जा रही है। तो ये है कि आजकल हर सिचुएशन को फेस कर हम अपने अपने कामों को कर रहे होते हैं। खैर भाई, इन शॉर्ट आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। बिरयानी, निहारी, पुलाव, कबाब, पकौड़े, कड़ी, दाल, सब्जी, क्या कुछ आपके लंच में इस वक्त मौजूद है हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के चाय लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो जरूर बताएं कि आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है, क्या खाने का इरादा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या पकाएं, ये मसला भी होता है। और ये मसला मुझे लगता है कि रोजाना ही होता है कि क्या पकाएं। तो क्या आप भी इस वक्त इस मुश्किलात का शिकार हैं कि लंच तो बनाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाएं? तो कोई बात नहीं, हम आपको खुद ही बता देंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे पास बहुत सारे लंचेस के मैसेजेस आ जाते हैं तो उससे भी आप कुछ मशवरा लेकर पका सकते हैं। तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। रशीद खान ने तो बता दिया है कि साबुत मसूर की दाल वो खा रही हैं, बाकी लोगों के लंच का हम इंतजार करते हैं। और जब तक आप हमें अपना लंच बता रहे हैं, हम चलते हैं एक अदद ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के

तो भाई ट्रैक भी आप लोग एंजॉय कर रहे थे, लंच हमने आपसे जान लिया है कि भाई आपके लंच में क्या है, तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज कर बताएं। इसी के साथ साथ हमारे पास जवाब आ चुका है, कहते हैं लंच में आज मसालेदार बिरयानी है। वाह, मतलब बिरयानी का जिक्र ना हो एवरीडे दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बिरयानी का जिक्र कहीं ना कहीं से आ ही जाता है या फिर किसी के लंच का हिस्सा होता है बिरयानी। और भाई क्योंकि कल संडे था तो संडे वाले दिन खाना भी बड़ा मजे का बनता है सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए, तो ऑब्वियसली अक्सर औकात ऐसे ही होता है कि जो आपके रात में खाना बनाए वो आपके लंच में जा रहा होता है। तो बिरयानी आपके लंच में बनी थी या फिर रात के खाने में, क्योंकि अक्सर औकात रात का खाना इतना मजे का बना होता है कि आप बड़े एक्साइटेड होते हैं उसे सुबह लेके जाने के लिए कि भाई ये ना हम अपने सुबह लंच में लेके जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ खाएंगे या कुलीग्स के साथ खाएंगे। और अभी तो कराची का मौसम जरा बेहतर भी हुआ है तो अब जरा जो है वो सालन शालन खाए जा सकते हैं, क्योंकि बीच में जो गर्मी से हम गुजरे हैं ना तो उस दौरान तो स्ट्रिक्टली लोगों से ये कहा जा रहा था कि अवॉइड करें ये मसालेदार खाने और ये रोगनी गजाएं, तेल और तेल में पके हुए ज्यादा खाने, पाए निहारी, बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी में कहते हैं कि जी गजा भी लाइट रखें, यानी कि सब्जियों का इस्तेमाल करें, फल खाएं। इस वक्त तो बड़ी ही जबरदस्त किस्म के फल मौजूद हैं, आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप सबसे पहले तो आप ठेलों को देखकर खुश हों और उसके बाद उसे खाकर लुत्फानंदोज हों। तो मजे मजे के फल और सब्जियां जरूर खाएं, ये बड़ी फायदेमंद है। और इसी के साथ साथ मौसम जरा बेहतर हुआ है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जी आप पानी पीना छोड़ दें, तो पानी तो पाबंदी से पिएं। मैसेजेस का सिलसिला जारी है जो हमारे पास आ चुके हैं, डील डन होती है कि हम इन्हें शामिल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें शामिल करने से पहले ना मेरे पास एक अदद ब्रेक आ गया जिसे शामिल करना है जरूरी, तो ब्रेक के बाद आते हैं वापस ट्रैक के साथ और फिर करते हैं आपके मैसेजेस कुछ शामिल। सो कहीं मत जाइएगा, हम आ रहे हैं।

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: ओके जी, तो आ चुके हैं हम वापस ट्रैक के साथ. मैंने कहा जी हम जा तो रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं तो खाली हाथ क्या आना. चलो जी ट्रैक को शामिल कर लेते हैं. तो हमें जुनेद मैसेज करते हैं फ्रॉम रेंजर्स सिंध थरपारकर. कहते हैं आप ही कैसी हैं आप. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं. कहते हैं आप ही बहुत गर्मी है यहाँ, 52 डिग्री है. ओ माई गॉड. कहते हैं दोनों ईद भी यहीं करी, छुट्टी नहीं मिली. वैसे बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, आप ही ड्यूटी पे टावर पे बैठा है. हाँ अच्छा बैठे हैं. ओके जी. कहते हैं कोई नसीबुल्लाल का सॉन्ग ही प्ले कर दें, साथ गर्मी भी एंजॉय करते हैं. अल्लाह वाकई में भाई, देखें जरा किस वक्त टेम्परेचर इज 52. ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई. अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे इस गर्मी में. ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, एहतियात करें, ख्याल करें, यही इस वक्त सबसे जरूरी है. बिल्कुल हम आपको नसीबुल्लाल की आवाज सुनाएंगे. डील डन है, आप हमारा शो सुनते रहेगा. आज हम प्रोग्राम का एंड करेंगे नसीबुल्लाल और नसीबुल्लाल की आवाज के साथ. तो बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे, आप एंजॉय करिएगा. नसीबुल्लाल और आबदा परवीन की आवाज हम आपको सुनाएंगे, तो डील डन है. अच्छा भाई, फराज हाशमी हमें मैसेज करते हैं, बहुत टाइम बाद आज आए हैं. फराज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हाउ आर यू. आई एम गुड. कहते हैं जी आज मेरे लंच में, ओके उन्होंने एक ब्रांड का नाम बताया है, वो इनके मील में जबरदस्त. ये तो अच्छी बात है भाई, ये अपनी पसंद का लंच कर रहे हैं और अपनी पसंद का जो भी खाना खा रहा है खुशी खुशी, दैट्स ग्रेट. और इसी के साथ साथ हमें हफ्सा मैसेज करती हैं. हफ्सा कहती हैं आप ही आज लंच में तुरई और रोटी है, तुरई इज ऑल्सो नाइस. तो सब्जियां के मैसेज आ रहे हैं, किसी ने अपना पसंदीदा मील हमें बताया है और दाल का पता चला है, दाल चावल खा रहे हैं. अच्छा अभी तक मेरे पास कोई ऐसा मील नहीं आया जिसने बताया कि जी अभी गोश्त खा रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा थोड़ी देर में. तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, क्लियर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. तो इस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. जब तक हम चलते हैं ट्रैक की जाने, वो आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
5: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
6: एंड
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: एंड
8: MCB बैंक फॉर लाइफ।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365।
9: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: FM 100
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
13: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: 100 FM।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैश कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैश कैश है ना।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
6: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
7: एंड
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एंड
9: MCB बैंक फॉर लाइफ।
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.
12: Back to back.
13: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
14: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
3: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: And
5: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: And
6: MCB Bank for life.
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Like us on facebook.com/fm247365
10: FM 247365

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: This program is brought to you by MCB Bank for Life.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: MCB Bank for Life.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Aji Higher Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए
3: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड
4: एमसीबी बैंक फॉर लाइफ
2: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
6: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है हुकूमत पाकिस्तान
7: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

पसंद मुझको पास आके बैठ के चेक कर लो पूरी है तो रेस एटीट्यूड अंग्रेज पर रेस वो ही जीते जो है स्टेडी एंड स्लो बैम बैम दिल धड़के डर डर के कितने करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye.
5: And
6: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 Mai se 12 Julai tak weekly challenges mein hissa le.
4: And
7: MCB Bank for Life.
4: And
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट उठाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: MCB 1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: किसने कहा था पैसे

0: चाहते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें। ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 24/7/365

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: कूल किंग।
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
10: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
12: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
13: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
14: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
15: किसने कहा था पैसे बचा?

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Aji Tire Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
3: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड
4: MCB बैंक फॉर लाइफ।
2: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
2: एंड
6: तूफान है हर जीत की पहचान है।
2: एंड
7: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
1: Connecting.
0: Holding you.
1: Holding.
0: With FM 100.
2: FM 100. FM 100.
3: It's not just another radio station for you. FM 100 is your need. Music, entertainment, weather update, stocks update, currency update, traffic updates, sports, news. FM 100 is your need. Yes, indeed.
4: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
9: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैस कैश है ना।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
11: This program is brought to you by
12: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
13: And Aji. Hire Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
14: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
13: एंड
15: MCB बैंक फॉर लाइफ।
13: एंड

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And aaj hi hire mini LED TV line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
3: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड
4: MCB बैंक फॉर लाइफ
2: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
7: कूल किंग बिजली का बिल देखा आंखों ने डबल चेक किया फिर भी शॉक सेम इसी बात लेकिन बीपी हाई
8: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
9: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
11: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
11: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो
12: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
13: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर अभी जैज कैश डाउनलोड करो पाओ इंस्टेंट लोड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस वो भी बिना किसी रिटेलर के आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना
10: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
14: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैज कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना
15: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर

0: This program is brought to you by Tufaan hai har jeet ki pehchan hai and
1: higher T3 AC expert extreme T3 inverter for extreme heat higher.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
5: FM247365
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: The new music revolution. Music that moves, rules, and takes you to another world. You have landed at the right destination. Thanks for tuning into our station. Welcome to FM 100.
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैस कैश है ना।
6: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
1: This program is brought to you by... And...
7: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dilko Hai Aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan Hai
0: and
3: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: 100 FM।
6: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
7: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100.
8: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
9: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
10: इवनिंग ड्राइव टाइम विद

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
6: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM 247365 5 times.

0: तुम पाकिस्तान।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving No Frost No Worries।
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
7: Yummy.
8: Adorable. Seven.
9: Say that guy crush on you.
10: Kepiaz to suno yaad.

Hello, hello, mic check. 1, 2, 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum, Pakistan. सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब. कैसे मिजाज शरीफ हैं और कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे. गर्मियाँ अच्छी जा रही होंगी. शिद्दत से गर्मी पड़ रही है. क्या ख्याल है? बहुत आला. नदीम अंसारी हमारे साथ, प्यारे से इंजीनियर सर, आदाबर सर. इसके अलावा उस्मान, मोहम्मद अली, गुफरान, सत्तार, सब हमारे साथ होते हैं और इनको मैं हमेशा याद रखता हूँ. अच्छा जनाब, याद से मुझे याद आया कि आप लोग भी मुझे याद रखते हैं और मैसेज करते हैं कि अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 3636. तो जनाब, गर्मी की सूरत हाल, इस पे भी आप कुछ डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं और बाकी जो आपका दिल करे आप मुझे मैसेज कर दें, हमारा काम है पढ़ देना. गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ भैया, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है. गाड़ी को आराम से चलाएं, सुकून से चलाएं. लाइटें फुल करके चला रहे हैं तो ये भी ज्यादती है. जो सामने गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ जुल्म कर रहे हैं आप. आपके तो मजे हैं, लेकिन अगर उसने भी हेडलाइट जला ली तो सोचे फिर क्या होगा. तो जितने लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए खुसूसी ट्रैक जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूं, और जो लोग घर में बैठे हुए हैं एंजॉय करो भाई. तो गाड़ी वाले हजरात के लिए यह खूबसूरत सा ट्रैक, और वो है कैसे,

वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ और साथ ही साथ मैसेजेस के सिलसिले भी शुरू हो गए हैं। सलाम अयाज और सब सुनने वालों को सलाम संजीदा को ढेरों दुआएं। अब ये मैंने अंदाजे से पहचाना है कि ये रुबाब हो सकती है, अभी हमें शक है, कंफर्म नहीं है। रुबाब जी को कह कह के हम भी थक जाते हैं कि नाम लिख लिया करो, घर वालों ने इतने पता नहीं पड़ोसियों से हर जगह से पूछ पूछ के लिखा है, सोचा है कि भाई शनाख्ती कार्ड पे क्या नाम लिखवाएं, रुबाब बिल आखिर उन्होंने सोचा, लेकिन ये नहीं बताती सबको, शर्मारी होती है। क्या करो यार, नाम लिखने में क्या है, सबसे पहले नाम लिखा करें सलाम के बाद, उसके बाद कोई दूसरी बात, मैं कितने जावा, कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा। नदीम भाई मैं क्या करूं। अच्छा जी, बिलावल गिजरी से, अयाज भाई आपको सलाम, सुंबल जी को भी सलाम, कादिर भाई को भी, एफएम 100 के तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर उम्मीद है कि तबीयत सेहत ओके टेक होगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन गर्मी ने माहौल बनाया हुआ फुल टाइम। नदीम अंसारी के मजे शाम से आ जाते हैं, आराम से एसी में बैठे रहते हैं बेचारे, बाहर जो है वो फुल गर्मी में, खैर काम काम की नौयत होती है। बिलावल कह रहे हैं सर गुड स्टार्ट, थैंक यू वेरी मच बिलावल। जरी नूर के भी मैसेज आ गए, सलाम कैसी तबीयत कैसे मिजाज जरी नूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप बताइए। अच्छा जनाब संजीदा भी पहुंच गई संजीदगी के साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं संजीदा आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, हमेशा की तरह प्यारे अंदाज में आपने वेलकम कर दिया है। मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। अच्छा जी क्या बात है, गाड़ी को चलाना बाबू समझ आ जाए, रास्ते कराची की सड़कें इतनी हैं, अक्सर औकात ना अगर जरा सी गाड़ी स्पीड में हो और सड़क खराब हो और गड्ढे में गाड़ी गिर गई, सीधा सर जो है ना ठा करके बचता छत पे। तो मेरे दोस्तों अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि छतों से टकराते टकराते दिमाग ही कहीं ऐसा, और फिर बंदा घर में आता तो ना चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। रिलैक्स कूल, दुनिया कुछ भी कहे आपने चिल और सुकून का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। शम्मा का शोला ये बताइए, माला जी ने गाया था जबरदस्त। अच्छा मैं मैसेज करने का तरीका बता दूं, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर।

0: ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: Active. Yummy.
9: Adorable. 7.
10: Say I've got a crush on you.
11: If you ask, then listen.

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं 3636 पर। मिसेस फारूक, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, ढेरों दुआएं आपने दे दी हैं, खुश रहें आप और बस यही एनर्जी चाहिए आपसे। अच्छा जनाब, और इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन जो हैं वो मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, सलाम सबको दे दिया है, हमें भी, टीम को भी। अंधेरी हर शाम फिर ठंडी हवाएं, बेटा जब से तुम मुल्तान तशरीफ ले गए हो गयासुद्दीन बलबन, अंधेरियां और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, सारा तुम्हारा कमाल है। थोड़ा कराची में भी चक्कर लगा दो, बहुत गर्मी चल रही है, कुछ थोड़ी अंधेरी यहां पे भी आ जाए, थोड़ी ठंडी हवाएं यहां भी चल जाएं, हराम है कोई ठंडी चीज चल रही हो। अच्छा जनाब, सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर। अयाज भाई, कॉल का सीन बिल्कुल बंद कर दिया आपने, क्यों? अहमद हुसैन, बाकी यार बात आपने सही की, मुझे भी बड़े याद आ रहे हैं आप, बहुत सारे दोस्त याद आ रहे हैं, एक का नाम लूंगा तो कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, सारे याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह, ये जरा नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा, हमें जो बताया गया वो यही है। दादू से अनवर पताफी भाई, क्या वो याद आया आपका नाम? मैं पढ़ता हूँ, मुझे वो नहीं, बचपन में खाते थे मीठे मीठे पतासे होते थे शायद, पताफी, ये पतासे नहीं है ले पताफी है, लेकिन बहुत मुझे वो पता नहीं, नाम पढ़ते मुझे वो याद आया। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दादू की सूरत हाल बताइए, क्या है सीन? गर्मी वर्मी ज्यादा तो नहीं हो रही? अच्छा, सारी गंदी चीज हमने बचपन में खाई, हमारा बचपन जो है ना फुल टाइम। अच्छा अब नहीं है वो सारे सिस्टम, अब नजर नहीं आ रहे, गंदे चूरन खा के जो है ना बचपन में, ये भी मैं आपको बता दूं, पुरानी बातें याद हो रही है, आज तक वो मुझे बाबा नजर नहीं आ रहा, बंगाली बाबा जिसकी एक लंबी सी दाढ़ी होती थी, पतली सी, बस मछलियां वो बेच रहे होते थे, यही एंटरटेनमेंट होती थी, वो उस वक्त की बात थी, गंदे किस्म का जो है ना चूरन बेचता था, लेकिन हमारे पेट इतने ढीठ, जब तक वो ना खाओ तबीयत सही नहीं होती थी। लेकिन ये वो गंदी चीजें खाई हुई तो अब कहीं जाके जो है ना सब चीजें बर्दाश्त हो रही। अच्छा जनाब, एक और जबरदस्त ट्रैक, हाय क्या बात है जनाब, इंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर।

जी वेलकम बैक, सुन रहे हैं फ्रॉम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। गयासुद्दीन बलबन मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सीव्यू में जब हम नए वहां आए तो सिर्फ एक शॉप थी, सिर्फ एक गैरेज में खुली हुई थी दुकान, इतना बड़ा सीव्यू और बिल्कुल खाली दुकान से फारिग। अब कहां से जाएं, डबल रोटी अंडे ये सब चीजें कहां से ली जाएं सुबह सुबह। तो वो दुकान थी कयूम की, फयाज भाई यूसुफ बोल रहे, कयूम की दुकान थी। सर ये मैं बंगाली, दूसरे वाले बंगाली की बात कर रहा हूं। ये होती थी तीन पहियों वाली रेडी, स्कूल के बाहर आते थे वो, हर तरह का जो है ना चूरन बना के लाते थे वो, लाल लाल छोटे छोटे बेर भी होते थे। मछलियां बड़ी फैसिनेट करती थी, लाल रंग की काले रंग की छोटी छोटी होती थी वो, और थैलियों में बेच रहे होते थे। मैं उनकी बात करूं, और इतना जहरीला गंदा चूरन, और लोग शौक से उसको खाते थे। तो ये वक्त वक्त की बात है वैसे, अब ऐसा दौर नहीं है। अच्छा पहले के वक्तों ने खाया भी होगा कुछ लोगों ने, लेकिन अभी वो भरम में नहीं, चिपस्टर मैं नहीं खाता भाई इस तरह की चीज। हालांकि खा के बड़ा हुआ फुल टाइम, हर चीज का पता होता है 90s 80s के बंदों को, लेकिन कुछ लोग ना बस भरम में। चलो आज के बच्चे गए तो समझ में भी आता है, सामान नहीं मिल रहा, अगर मिल भी रहा तो बर्गर चीजें मिल रही है। लेकिन नहीं, पुराने वाले जो बुड्ढे हैं वो भी कह रहे नहीं मैं भी बर्गर था, हालांकि तबीयत से गड़बड़ थी इसकी, लेकिन नहीं आर्टिफिशियल, हम जैसे बन जाओ, जैसे हैं वैसे ही। कोई भी सॉन्ग रुबाब और संजीदा के नाम, जरीनी जो हुक्म आपका, आज तो बारिश हो जाए बस दुआ है मेरी, जरीनी तुम्हारी दुआ अल्लाह करे असर कर जाए। कादर बख्श भाई भी आ गए, यास भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? बिलावल भाई और संजू को भी सॉन्ग रेडी कर, ठीक हो गया जी। रुबाब आपको और सुनने वालों को सलाम, संजीदा को सलाम और ढेरों दुआएं भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी बातें सुनकर। गचक वाला याद आ गया, गंदे हाथों से, हाँ यार टेस्ट ही उसी में होता था ना, गंदे जितने गलीज उतना लजीज। अच्छा एक वो चने वाला भी आता था और उसकी खुशबू होती थी बड़ी, जब वो गरम गरम बेच रहा होता ना, ओए होए होए हो, पूरा भाई बाहर फुल माहौल बना होता था। और कुल्फी वाला अगर आपने वो नहीं खाई तो दुनिया की अजीम नेमत से महरूम हुए आप, घंटी बजाता टिंग टिंग टिंग करके और लकड़ी को उसमें डली हुई और वो उसमें से बड़ा टेक्निकल तरीके से निकालते थे वो सांचा, इतना गंदा तोबा ग्रे कलर का होता था लोहे का वो, उसमें से वो फिर कुल्फी निकलती थी और फिर साइड पे अलग से डब्बा होता था जिसमें वो दूध वूध होता था, पता नहीं क्या होता था उसमें, वो डुबो के और फिर उसके बाद वो आपको देता था। हेलो ओए होए होए होए होए, फिर जो टेस्ट आता था मैं कहता हूँ खाते ही बेहोश।

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
2: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
10: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: Like us on facebook.com/fm247365
11: FM247365
12: Active, yummy,
13: adorable,
14: zabardast. Say I've got a crush on you.
15: Dekhiye pyaar to suno yaar.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस के HI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। अच्छा जी यार, वर्ल्ड कप मैच भी आ रहा होगा थोड़ी देर बाद, स्टार्ट होगा 10 बजे से। अर्जेंटीना और दूसरी कौन सी टीम है जरा मुझे बताना बिलावल। अच्छा जी, और रूना लैला को आपके शो में सुनकर हमेशा खुशी होती है संजीदा, बस खुश रहे मैं ये चाहता हूँ। और इसके अलावा कुछ कॉलर वो भी याद आ रहे हैं इनको, एक का नाम लिया तो सब याद आएंगे, फिर साडा नाम ले लिया आपने। अच्छा जी, मिसेस फारूक कह रही मैं भाई, सोचो क्या सर। अच्छा पुरानी बात है, जो आप बचपने की बातें याद करते हैं हंसी वैसे वाकई आती भी है। ये क्या हमने चवल, लेकिन यार उसका मजा था, बेहतरीन मजा था, और प्रैक्टिकल इंटरटेनमेंट होती थी। अब तो ये ना कि लोग बस मोबाइल है और घर है और कमरा है और आराम से बैठे हुए हैं। जो एफर्ट करनी होती थी 90s 80s के बच्चे को, उसने खुद ही जाके दोस्त से भी मिलना है तो घर जाके वो घंटी बजाएगा, अच्छे है घर पे, अब्बा का मूड अच्छा हुआ तो वो कहेंगे हाँ बेटा बुलाता हूँ, और अब्बा का मूड हटा हुआ फुल टाइम नहीं है, रोज आ जाते मुंह उठा के। अब बंदा क्या कहे, अब्बा मुंह लगा हुआ, मुंह तो उठा के आना पड़ेगा, अब क्या घर पे छोड़ के तो आने सर है, और बगैर मुंह के मैं बहुत बुरा लगता हूँ। लेकिन क्या वाले देते थे इसलिए इनको कुछ बोल नहीं सकते, तो ये सारी तकलीफें उठा चुके हैं सारे, मैं की कर। नियाज बहादुर आ गए, नियाज भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, बल्दिया टाउन कराची से। नियाज भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम। नियाज बहादुर भी मैं कॉल करते हैं और इनकी आवाज मेरी बड़ी फेवरेट आवाज है। नियाज भाई तबीयत कैसी है, ठीक है, पश्तो गाना सर आज उर्दू है ना, फिल्मी गाने उर्दू लगा रहा हूँ जरा। अच्छा मैं अभी गाने ढूंढ रहा था तो मेरे नाम की फिल्म भी है भाई, अयाज फिल्म भी है भैया, और उसका एक इतना हिट गाना है, थोड़ा सा सुना रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग जरा इतनी मजे की नहीं है, थोड़ा सा सुनाता हूँ। ये देखें आप जरा ये गाना अयाज, अगर आप मूवी देखें पुराने वक्तों की तो उसमें ये गाना देखो, अयाज भी कितना पुराना नाम है।

मतलब इतना सुनाता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग जरा इतनी मजे की नहीं है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर की फिल्म लग रही मुझे, फुल टाइम। अच्छा जी, जो ट्रैक सुनाने वाला हूँ ये भी तरह पुराना है, लेकिन रिकॉर्डिंग अच्छी है, गाना तो क्या कहने।

0: Full Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: भाई जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं फ्रॉम 100 और मिसेस फारूक यानी क्लासिक सॉन्ग्स जो है ना वो प्ले कर रहे हैं। बाकी में ऐसे अगर हम कहें ना ओल्ड इज गोल्ड, सही मानों में ये हैं ओल्ड इज गोल्ड, ब्लैक एंड व्हाइट दौर के 50s के, लेकिन ये कि जरा 80s के भी प्ले करने चाहिए। 90s के तो मैं कमी प्ले करता हूं, 80s के ज्यादातर होते हैं और 70s के तो हिट गाने हैं भैया। अच्छा जनाब इसके लिए कहनी, अच्छा ये आपके नाम, हाँ जी मेरे नाम की अयाज नाम की लिखा हुआ तो ये था, जरा चेक कीजिएगा यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। इमरान भाई मैसेज कर रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफें कर दी हैं, वाह वाह वाह सर बहुत शुक्रिया, सबको सुनने वालों को सलाम दे दिया है, दुआएं मुझे दे दी हैं और कह रहे हैं कि मैं मंडे के शो का इंतजार करता रहता हूं। अच्छा जनाब बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मोहनलाल उमरकोट से। मोहनलाल अदा कैसे, मोहनलाल आता तो मुझे वो इंडियन मूवीज नहीं होती पुराने जमाने की 70s के दौर की, राजेश खन्ना वाली, मोहनलाल वो याद आने लग जाती है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मोहनलाल आप भी खुश रहे, हमेशा खुश रहे। अयाज भाई आज पीर है और आज मैडम की आवाज में चला दें, मैडम की आवाज में तो सर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। लीजिए जनाब मैडम की आवाज में, अभी जो थोड़ी देर पहले भी मैंने गाना प्ले किया मैडम की आवाज में, और किसकी आवाज में आप कह रहे हैं, तो लीजिए जनाब एक और मैडम की आवाज में बड़ा खूबसूरत गाना, और वो है कैसे

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
0: FM 365 FM 100। 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
5: जबरदस्त प्यार, तो सुनो यार।

रंजना वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी बिलावल भाई, चलो शुक्र अब सही हो गया, कुछ टेक्निकल मसले आ गए थे, बिलावल भाई नहीं सुन पाए। सत्तार भाई तशरीफ ले आए। सत्तार भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो, खैरियत से हो? सत्तार भाई दी ग्रेट। और नदीम अंसारी की अभी हो गई है छुट्टी। अच्छा जनाब बिलावल, मैं पूछ रहा था वर्ल्ड कप मैच शुरू हो गया होगा और अभी, हाँ जी बिल्कुल 0-0 है अर्जेंटीना का और ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं सरकार, ऑस्ट्रिया, इनका मैच है तो देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा जब गोल चोल होंगे तो। नाइस सॉन्ग, सारे सॉन्ग सुपर। चले जरी नूर, आपको गाने पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। न्याज बहादुर के फिर मैसेज आ गए। अयाज भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आपको और तमाम सुनने वालों को। न्याज भाई इसके अलावा दूसरा भी टाइप करवा लो किसी और से, कोई दूसरा मैसेज भी करो, पढ़ लिया मैंने ये वाला ना, कोई और बात करो, आगे बताओ क्या होना चाहिए, क्या सूरत हाल है, क्या चीज हो रही है। गयासुद्दीन बलबन बड़े गौर से सुन रहे हैं, सारे जुमले लिख लिख के भेज रहे हैं, मुंह लगा हुआ है तो उठा के यहाँ ना, सही बात है ना, बस यार मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। मिसेज गफार जो है वो सलाम कह रही है, वालेकुम सलाम मिसेज गफार, क्या हाल है आपके। अयाज आज की प्लेलिस्ट दिल के तार छेड़ रही है, ओए होए देखना तार ज्यादा ना छेड़ जाए कहीं, सुपर सॉन्ग है सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन की बातें अच्छी थी, अभी तो चल रही है, अभी खत्म गाँव है, अभी तो वो वैगने याद आ रही है, U5 XA X10 तो अभी भी चल रही है। मैं हैरान हूँ उस पे जो बेचारे जो मुसाफिर सफर करते हैं उनको तो एक एक अवार्ड देना चाहिए, इतनी थकी हुई बस इंसान को उसमें बिठा के, जानवर को भी नहीं बिठाया जा सकता लेकिन उसमें इंसान बैठे हुए, और हमारे बचपन की वो बस आज भी चल रही है। लेकिन वही बात है भाई, शुक्र अदा करें वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन यार ये अवाम क्यों नहीं, ये जो गवर्नमेंट है ये अवाम को क्यों नहीं इज्जत दे रही, ये अवामी चीजें इतनी गंदी क्यों, आप नोट करें यार जो भी अवामी चीज होगी वो हमेशा आपको फारिग मिलेगी। अवाम भी माशाल्लाह तबीयत से फारिग हो रही है, चीजें अच्छी लगा के दो तो बिगाड़ देती है, लेकिन यार ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, चीज अच्छी तो दें कम से कम। तो अब जरा बसें अच्छी थोड़ी बहुत बेहतर की हैं, लेकिन पुरानी बसों को बंद करें यार, उस पर हादसे कभी खतरा है, ब्रेकें फेल हो जाती हैं, कभी कभी वो चलते चलते उसका पहिया निकल जाता है। मैं तो जब वो गाड़ी देखता हूँ ना इस तरह की X10 और ये वाली वैगने, गाड़ी थोड़ा और पीछे कर ले तो किसी टाइम पे भी कोई चीज निकल के आके लग सकती है, सुनिए तो बचपन में ही चीज उधड़ना शुरू हो जाती है जब, तो ये बसों का भी यही हाल है, कुछ पता नहीं कौन सी चीज किसी टाइम पे भी गिर जाती है। भाई इतनी गर्मी में बेचारे मुंह निकाल के आधा बाहर आधा अंदर, ये भी डेंजरस चीज है, और बसों पे वो लटके हुए छत पे बैठे हुए हैं, तार टकरा, अल्लाह रहे बस अल्लाह ही चला रहा है, मैं की करा, दाने लगा देता हूँ।

हाय क्या बात है जनाब, ये आशिक अब्बे ने सुन लिया ना, इसकी खैर नहीं है आशिक की। ये पुराने वक्त के अब्बा जो थे ना, बड़े हिटलर होते थे, उनको पता नहीं लगा, वरना आशी वाशी जो है ना साइड पे होती। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। अच्छा भैया मैसेज आ गए हैं नौरीन तौसीफ के। नौरीन तौसीफ कैसे हैं? वालेकुम सलाम यार भाई के मिजाज कैसे हैं? ढेरों दुआएं आपके लिए, तमाम प्यारे लिसनर्स के लिए भी। चलें जी, बड़ी मेहरबानी नौरीन जी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से मैसेज करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, इसके अलावा शहजादी आ गई है। ओहो फरीन शहजादी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? तमाम सुनने वालों को, अशरफुल मखलूकात को, अच्छा जी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। इतने मुश्किल लफ्ज, पहले हम इस तरह के गाने सुन के टुन हुए हैं। सीधा ये गाना इसके अब्बा को सुनाना चाहिए, सीरियसली बात करता, सारी शौकी निकल जाएगी। और भाई अयूब भाई आ गए। अयूब भाई कैसे हैं आप? अच्छा अयूब भाई की क्वालिटी है वैसे, आप मैं आपको बताऊं, सलाम भेजे, कोई मर्द इसमें नहीं है, सारी औरतें हैं, मेरा मतलब लड़कियां हैं। अयूब भाई कह रहे हैं अयाज भाई आपको, एक मेरा मैं गलती से क्योंकि मैं शो कर रहा हूं, तो कह रहे हैं कि महानूर को, मुश को, सबा गुल को, और फिर एंड में उन्होंने कह दिया तमाम सुनने वालों को, और गुल मानो का नाम कोई अच्छा सा गाना। ठीक अयूब भाई, वाह वाह क्या बात है। मैं प्ले करता हूँ उनके लिए, बहुत अच्छा सा गाना प्ले कर देता हूँ मैं। वाह वाह अयाज भाई, रीमा आज तो आप अम्मी को खुश कर रहे हैं। रीमा जी आप भी खुश रहे हैं, अम्मी खाली क्यों खुश हो रही है, आपको भी खुश होना चाहिए। बिलावल कह रहे सर, सर के पता नहीं क्या लिखा है, आबदी के एतबार से सिटी में ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, आबादी के लिहाज से। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे ये बात है, कराची वाले भी देखो ना, आबादी किए चले जा रहे हैं यार, उनको भी तो खुदा का खौफ करो, उनको समझाओ भाई आबादी इतनी नहीं करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ट्रांसपोर्ट का इजाफा करें, चलो आबादी कम कर लो, लेकिन ना आबादी भी बढ़ती जा रही है और ट्रांसपोर्ट उतनी की उतनी है, क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कसूर है, उनका तो नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर नहीं। अच्छा जनाब, और हाय खुश हो रही है भाई, संजीदा जी खुश हो रही है, बस किसी को तकलीफ में देख के आपको मजा आ रहा ना। और मिसेस फारूक खुश रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। अच्छा जनाब, एक और बड़ा जबरदस्त ट्रैक मेहंदी हसन साहब के, क्या कहने, मेहंदी हसन साहब तो कुछ भी गाते तो अच्छा गाते हैं।

है जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर और टाइम भी गुजरता चला जा रहा है। अच्छा जी, संजीदा जी को गाना पसंद आ रहा है और इसके अलावा फरीन शहजादी बहुत शुक्रिया कह रही है कि भाई संडे को कल मैं आया था, आपने शायद नहीं सुना, कह रही दो दिन से नहीं सुन रही, चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, अयूब आफरीदी कह रहे हैं अयाज भाई ज़ियारत गुल जुमा गुल खान सर गुल गुल डंडा गुल ये कैसा नाम है सर, आगे अजीब अजीब नाम लिख दिया, गर्मी भरा सलाम। अच्छा चले जनाब, जो जो नाम लिखे इन्होंने भाई सबको सलाम, वालेकुम सलाम उनकी जानिब से। अच्छा अयाज भाई, रीमा आज हुरिया और सुभान को सालगिरह है, दोनों को आप एक ही दिन दोनों पैदा हो गए हैं, आप विश कर दें और मेरे छोटे भाई अली की तरफ से आपको सलाम। वालेकुम सलाम, चले जनाब हैप्पी बर्थडे दोनों को, सुभान को भी हुरिया को भी। मुझे याद है कि पुराने वक्तों में जब बर्थडे आती थी, सालगिरहें आती थी, तो इस तरह के गाने भी लगते थे कि भाई ये गाना लगाओ भाई, आज टेप रिकॉर्ड के ऊपर कैसेट के ऊपर ये वाला गाना लगेगा, और वो था कैसा, सुभान आपके लिए और हुरिया जी आपके लिए और जिन जिन बच्चों की आज बर्थडे उन सबके लिए।

जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ये एक साल के तो नहीं होंगे यकीन, बड़े होंगे, लेकिन गाना क्योंकि जरा सालगिरह का था और सालगिरह का जिक्र आ गया तो एक साल का तो मैंने प्ले कर दिया। क्या मासूम दौर था, कितने कितने मासूम मासूम गाने, हम इसी में खुश हो जाते। आज देखो शकीरा को ना सुने, जब तक इस तरह के गाने ना सुने तो लोग बच्चों को मजा ही नहीं आ रहा। रमजान पठान, अयाज भाई, अयूब आफरीदी, सिर्फ ना फीमेल को सलाम। हाँ बिल्कुल सही कर, आगे जो लव दिख रहा है ऑनियर में पढ़ने में शर्म आ रही है रमजान भाई, तो मैं अपनी तरफ से इसको मुहज्जिब बना लेता हूँ, फीमेल को ही सलाम भेजते हैं, ये उन्होंने लिखना चाह रहे हो। अयूब आफरीदी कह रहे हैं, अयाज भाई आप भी खामोश शरारती हो, आप हंसते नहीं हो मगर शरारत पूरी करते हो। मैं तो सीरियस सीरियस पढ़ देता हूँ अयूब भाई, मैं क्या करूँगा, आपके मैसेजेस खुद बता रहे थे कि ये क्या है। अच्छा जनाब, ये तो मैंने बच्चों के लिए प्ले कर दिया, अब वापस आते हैं, जरा फिर शामिल करते हैं जबरदस्त से ट्रैक और पुराने वक्तों के गाने। हाय हाय हाय हाय, क्या गाना है ये नूरजहां का।

भाई जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और लगता है कि गाने बहुत पसंद आ गए। बहुत शुक्रिया आयशा मैसेज कर रही हैं, प्रोग्राम की बहुत तारीफ कर दी है, बातों की तारीफ कर दी है। अयाज भाई लगता है मूड में तो मैं हमेशा आता हूँ, जब मैं आता हूँ ना यहाँ आप लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ खुद ब खुद मूड जो है ना ऑन हो जाता है और मजा आता है आप लोगों से गपशप करने का। और अयूब भाई कह रहे हैं अयाज भाई मैं तो बहुत सारे मर्दों को भी सलाम कहता हूँ। अच्छा ठीक हो गया सर, मैं ऐसी मजाक कर चले जनाब। बिलावल बिल्कुल घूमने फिरने जा रहा फुल टाइम, एक दिन का भी नागा नहीं है इसका छुट्टी का, लेकिन भाई खुश रहे आप दोस्तों के साथ, वैसे वाकई मजा तो आता है। अच्छा जनाब और आए आज लगता है कि मिसेस फारूक आपके पसंद के गाने लग रहे हैं और थोड़ा एक जिक्र कर रही हैं कि पहले के सॉन्ग बहुत सैड होते थे, ये बात आपने सही कही, जरा सीरियस भी होते थे, जरा सैड भी थे, चिचोरे भी थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी होती ना वो जरा सीरियस गाने, और सीरियसनेस आ जाए तो फिर थोड़ी सी सैडनेस आ जाती, लेकिन शायरी वारी बड़ी कमाल होती थी। कुछ भी ना कहा कह भी गए बंदा सुनता रहे मुनफरिद क्यूशिड, अरे बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया आपका। लो जी फिर इसी बात पे एक और खूबसूरत ट्रैक।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
5: FM 24/7 365
6: Active, yummy, adorable,
7: zabardast. Sun ho yaar.

जी जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और टाइम 10:31 हो गया है. अच्छा जनाब, रीमा कह रहे हैं मजे तो बिलावल के हैं, अल्लाह पाक खुश रखे बिलावल को. आमीन आमीन, ऐसे घूमते फिरते रहे वो. और कादिर बख्श आगे कह रहे भाई हमेशा दो दरिया जाते हैं बिलावल भाई घूमने के लिए. रात को वहां क्या होता है? कुछ नहीं, पानी होता है और मछलियां अंधेरे में घूम रही होती हैं, दिन में शर्मा रही होती ना. बिलावल जैसे और भी बहुत सारे आते हैं दिन में, तो कहती है रात में निकलो, कम से कम हम नजर तो नहीं आएंगे. अच्छा जी, आपका शो इतना अच्छा होता है मेरे घर वाले भी आपके फैन बने. अरे बड़ी मेहरबानी जरीन और बेचारे अच्छे पहले कामों में मसरूफ थे, दो घंटे के लिए उनको भी इस काम में लगा दिया. आए संजीदा जी, बहुत शुक्रिया. गाने पसंद आ रहे हैं, लीजिए जी एक और जबरदस्त ट्रैक. संजीदा जी जरा चेक करें इस गाने को.

वेलकम बैक दोस्तों, सुन रहे हैं आप जबरदस्त से ट्रैक्स और साथ साथ मैसेजेस भी। मलिक सफदर, इनका भी मैसेज आ गया है, सलाम सबको और अच्छा शो करते हो आपका सानी। अरे नहीं मलिक साहब, आपका प्यार है और कुछ नहीं है। और रुबाब आ गई है फेसबुक पर और कह रही है यार मेरे एसएमएस नहीं पढ़ते, अफसोस हुआ मालूम सितार को सलाम। अभी तो आप ही को तो पढ़ रहा हूँ रुबाब, क्या है चक्कर? कोई टेक्निकल मसला है क्या है? तक आवाज नहीं पहुंचती मेरी रुबाब, क्या क्या के थक जाते हैं, अंदाजे लगा लगा के थक जाते हैं। ये नाम नहीं लिखती, ये वही होगी और फिर भी नाराज है। अच्छा ये कुछ होते हैं खानदान में भी होते हैं, बोतल नहीं पूछी मुझे, सबको पूछ रहे हैं मुझे नहीं पूछी बोतल, जरा सी खता भी जो है ना, ये कुछ रिश्ते। मुझे लग रहा है रुबाब का भी ऐसी चक्कर है, इसके फैमिली वाले भी इससे होते हैं, सबसे नाराज होगी ये। उसको सामने खड़े करके तस्वीर बना दी, हमको पीछे धकेल दिया, वो मौका चाहिए किसी बात का। ये देखो निकाह हुए, छुआरे सबसे पहले अपने जानने वाले को दिए, मुझे पूछा तक नहीं। तुम ले लो यार छुआरे, कौन सी ये इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं कुछ कुछ लोग। और बोतल वाला तो वो बस है, वो तो बाकी दिल पे जाके लगती है, बोतल नहीं पूछी सबको पूछ रहे मुझे एक बोतल नहीं पूछी, पूरा क्रेट बंदा ला के रख दे फिर भी नाराज होगा। देखो सेवन अप का ला के रखा, पेप्सी का नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मोहन लाल अद्दा मोहन लाल, प्लीज प्ले अ सॉन्ग। देखो गाने नहीं लिखो प्लीज मोहन लाल, गाने नहीं लिखो, गाने हमारे पास मौजूद है बहुत सारे, कोई हमारे इस काम में तुम जरा से भी तकलीफ नहीं करो। सलीम मेमन, सलाम अयाज भाई, मुझे लगता है कहने के मेरे सबर का फल का कोई जूस बनाकर पी गया सलीम मेमन, यही तो सबर हो ही नहीं रहा, तुम्हारा फल जो है ना पकने से पहले ही खराब हो गया, कोई वजह है जिसकी वजह से ये गल नहीं रहा। राइट जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानी और फिर वापस आते हैं, सुनते रहे FM 100, मैसेज कर रहे हैं 3636 पर।

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और वाकई ना करें वे जानी आपने, बस नाम नहीं लिखते तो फिर मैसेज पढ़ने का मजा ही नहीं आता। नाम लिखेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या। सर एक शादी का सॉन्ग, फीमेल शादी का। थैंक्स। फीमेल शादी का और मेल शादी का अलग होता है? शादी का तो शादी का होता भाई, ये क्या बात करते। अयाज बट फिर भी अच्छा लगता है, कुछ भी कहो। रुबाब जी आपका एहसान, आपको तो मैं प्यार से बोलता हूँ भाई, लेकिन तबीयत थोड़ी मुझे लग रहा है कैसे मिलती है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना। हालांकि नाम शामिल किया हुआ आपने 3636 पे, मुझे जो मैसेज किए मैंने शामिल किए कि नहीं किए, फिर भी आपकी शिकायत। मैं दिल दस रोना आ जाता है बंदे को, मैं बता रहा हूँ। टाइम तेजी के साथ गुजर रहा है। अच्छा जब थोड़ा सा ये ट्रैक जरा, आए पप्पा याद आ गए। जब भी अहमद रुश्दी का गाना लगाता हूँ पप्पा याद आते हो, और पप्पा ये पे ये गाना फिट भी है।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान है। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और जाहिद सबाती भाई का मैसेज आ गया है। अयाज अहमद अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम। अयूब आफरीदी कह रहे हैं अयाज भाई गुल मानो का सॉन्ग भूल गया मैं अभी, ये जो नेक्स्ट ट्रैक है अयूब आफरीदी की तरफ से गुल मानो को मैं डेडिकेट करता हूँ थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, कादिर बख्श बलोच कह रहे हैं आप कल शो करेंगे? सर अब कल से जरा छुट्टी आ रही है, कल भी परसों भी, मेरे ख्याल से अब संडे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, एक हफ्ते की छुट्टी है वैसे। अच्छा जनाब मैच हो रहा है वर्ल्ड कप का, फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के दरमियान, एक गोल कर दिया है मैसी भाई को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पहले भी तीन गोल किए, पहले मैच में उन्होंने हैट्रिक की और अभी भी जो एक गोल किया वो इन्हीं भाई साहब ने कर दिया है। मैसी भाई में क्या है ऐसी बात, कोई नहीं पकड़ पा रहा मैसी को, कोई मासी रख लो, क्या करें यार, रोक लो मैसी को भैया, ये बंदा गोल कर देता है। अच्छा जना मेरी बाजी का सॉन्ग बहुत अच्छे, अच्छा मेरी बाजी को सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो गाना मैं डेडिकेट करने जा रहा हूँ वो तो गुलबानों को और अयूब भाई आपकी तरफ से, और वो है कैसे

दस ट्रैक। थोड़ा दुख भी है इस गाने में वैसे। अयूब भाई का मैसेज फौरन आ गया, आयाज भाई थैंक यू, मोस्ट वेलकम ब्रदर, खुश रहे अयूब भाई। अच्छा जनाब, टाइम जो है वो कह रहा है कि बस अब जरा आपने थोड़ी देर बाद खुदा हाफिज करना है। बहुत सारे गाने रखे थे आज यार, क्यू शीट बड़े दिल से बनाई हुई थी हमने, थोड़ी थोड़ी सुनाऊं आपको मैं जो प्ले होने से रह गया। हाय हाय कितना अच्छा गाना था, रह गया प्ले होने से।

हाय बोल बोल के तो थक गया हम जनाब, दो घंटे से बोल ही तो रहा बंदा। बहरहाल जनाब ये भी एक ट्रैक था जो आज प्ले होने से थोड़ा रह गया, जल्दी से जरा सा आगे करके।

0: Thali.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365

उठ गए आंखों से पर्दे, उठ गए आंखों से पर्दे, राज खुले सब जलवों के, राज खुले सब जलवों के, मुझसे अब

0: हेलो
1: रे यालो लो दिल कहते उनको दिलाक नहीं आले मोहम्मद मदाल उनको दिलाक नहीं आले मोहम्मद कला वो जो अवियार को असहाब में जम करते वो जो अवियार को असहाब में जम करते हैं मश मश जो